दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होगे, खाली सड़क है, एक फैलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश का शुरुआत हो जाता है, आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आप फिर दूसरे बगल, वो भी दूसरे बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी इस बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

नरम अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश की आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ ही साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जाली था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं जानते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनीदत्त के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद वीएनटी माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद, देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन के बाद है देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया। तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा, तो उही दिनों से उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर से इन दिनों में तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा,
2: राजा,

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक डकैत और कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों, एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पद्म श्री उदित नारायण एंड श्रिया घोषाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइस पाए जाते, लोग तफोड़ी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं सोच समझ के, कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

क्लास हो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसके गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बाद अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाद पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूलता प्यारी सी फूलता वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठी हुई है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

बार के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शस्त्र की बात है, जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंसानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंसानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों, ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक पे जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, तो एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज़ ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज़ क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज़ निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेके चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है, तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज़ उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज़ जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज़ अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज़ उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज़ का कहानी फिल्म बंदे हार्ट का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोर दा के आवाज में, और साथ ही साथ लता

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहन हिन्सारे पर आप चुन है।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू की आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

0: कारण हुई।
1: रात्रि कली तो वादा किया है, एक बार फिर ख्वाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार की, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब

दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होंगे, खाली सड़क है, एक फैलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश का शुरुआत हो जाता है, आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आप फिर दूसरे बगल, वो भी दूसरे बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, ये बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

नम अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश की आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया है दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जारी था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं जानते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनिधत के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद विजयंती माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद, देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन के बाद है देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया। तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा, तो उही दिनों से उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं इन दिनों में, तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा,
2: राजा,

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक डकैत और कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 तक 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों, एक रोज में 28 तक नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पन्ना श्री उदित नारायण एंड श्रिया गोसाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर, एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइज पाए जाते, लोग तफोड़ी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं, सोच समझ के कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

जी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ के सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसे गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बाद अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाद पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम, इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल अक्षय शास्त्र की बात है, जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुई है, उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से 0 3 5 2 2 4 0 पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, ओ माजी रे।

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल द्री सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज़ ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज़ क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज़ निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज़ उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ़ किया मुमताज़ जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज़ अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज़ उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज़ का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहों ने सारे पर आप चुन है।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू की आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपरमार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

दो लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया की आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार या गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब।

दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होगे, खाली सड़क है, एक फैलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश का शुरुआत हो जाता है, आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आप फिर दूसरे बगल, वो भी दूसरे बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, ये बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश के आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ ही साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया है दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जाली था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं चाहते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनीदत्त के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद वीएनटी माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद, देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन के बाद है देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया। तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा, तो उही दिनों से उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं इन दिनों में, तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा,
2: राजा,

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक देखता हाथ और कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों, एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

सरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे महबूबा। ये तस्वीर का कहानी दोस्तों, मुझे याद हो गया बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब लोग फिल्म देखते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हेलन का समय आते थे एक का तो लोग बहुत से हल्ला मचाते थे। हेलन का बहुत फैन था दोस्तों, ये एक फिल्म में हेलन खेले थे, फिल्म लोग दो बार या तीन बार जाकर देखते थे। और फिर भी आप जानते हैं ये तस्वीर जो है फिल्मी स्टार्स का तस्वीर जो है ये लोग परमाणु का बाजार या बड़े बड़े दुकान में भी बेचते थे। साथ में वहाँ सड़क के बगल में भी एक आदमी तस्वीर बेचते थे, लेकिन अगर आप गया वहाँ और पूछता कि मुझे एक हेलन का तस्वीर चाहिए तो वो सेल आउट, हमेशा वो बेचा जाता था। जिस हेलन का तस्वीर आते थे लोग खरीद लेते थे अपन बटुआ पोर्तोमनी में धर कर और घूमते थे। उन दिनों का शौक यही था।

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पन्ना श्री उदित नारायण एंड श्रिया गोसाल, नदीम सरवन का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम सरवन ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइज पाए जाते, लोग तफोड़ी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं, सोच समझ के कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

की एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है। जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज का और राजेंद्र कुमार का दिल के बाट अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाट पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वीएनटी माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वीएनटी माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार और राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

चित्र के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतंक शस्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहुन हिंसानी, जो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहुन हिंसानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूल सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज में आप गीत सुनेंगे। फिल्म बंडे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों ये फिल्म, जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल द्री सीफन तक में जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज़ ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज़ क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज़ निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज़ उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ़ किया मुमताज़ जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज़ अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज़ उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज़ का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

हो माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोर दा के आवाज में और साथ साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये राते कहीं बीते ना ये दिन फाहुन हिम सारे पर आप चुन है।

आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेस, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार। रणधीर का उसके बाद हम चलते हैं नौटंकी कोड इंस्पेक्टर अविनाश के ओर हम चलते हैं। और नौटंकी में क्या होता है दोस्तों, आओ सुना जाए तू।

0: मजनू है कि छलिया,
1: कब से देख रही हूँ मेरा पीछा किए जा रहा है, मैं क्या इतनी पसंद आ गई हूँ?
2: अरे और कोई जो होता तो कर देती मैं तो हल्ला जी।

और सयाज मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे। मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है। रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे हैं देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हमने यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम चलते गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: रूम में रहेंगे।

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर, भैया बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट ऑन और कुछ नाचने स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारे यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

और बुधराम होलास दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सो सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सो का चटनी है दोस्तों।

ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शोकास सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो एंड यानी कि हम चलते हैं बैठक गाना सुजल उमराव भैया उसके ओर हम चलते हैं और वो क्या सुनाते हैं आओ सुना जाए।

और क्यों खफा है तू हमसे, लगा है तुमसे एन बैठकाना जोंग दान किने वो दित नोइट नोइट फॉर बैलात खान फान शर्ली गर्ली।

लियाओ आई वांट यू कौन ची मांगे भैया को दीना मांगे द बैठक गाना टाइगर धरविंदर सिंह जीवनाथ की बात तो हम चलते हैं और अपना भुजनिया सॉन्ग भुजनिया के पतोहिया ना बात करे हैं और वो है प्रदीप गोपी का गाया हुआ ये सॉन्ग आओ मिलकर सुना जाए एंड अमेजिंग स्विंगर स्विंगर

और दोस्तों कोठड़िया की और इस गीत को गाया है राजेश शिवनंदन के बाद हम जाते हैं एक बार फिर और वो है सुजल उमराव की ओर।

और बुधराम होलास दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं। ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे। आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़। और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों कुछ सोका चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोका चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना

0: vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden twee verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Tot dusto, aap jante hai, pyar bhari, gito ki bahan program aaj phir hamara shuruaat hai. Kuch nayi nayi, kuch purani purani, aur kuch meethi meethi, sweeti sweeti, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों. कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए. हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे. कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा. हमारे दोस्तों तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना. एक गीत के ओर आओ मिलकर बस सुना जा.

दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 और हम चलते हैं। मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मोर ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूटकर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं। छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज़ कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपके शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं, वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं, जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्ध रात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

संस्मरण तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल के ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 0। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन। हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

0: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहाँ तक ये आवाज पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ते, हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।
1: शिप

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जादू तो दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता नहीं खतिन तू इनसे का फिल्म में मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे एक था राजा एक था रानी, नहीं टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नहीं टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिव का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से बोला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कहती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई हंटिंग ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी हम आप लोग के लिए चलते नई हंटिंग वेफन शस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू।

यहाँ दोस्तों अंखियों का नूर है तू, अंखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज अभी थे। लेकिन 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं लेकिन 5/6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अल्लाह जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एल महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखा में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: न कोई रहा है न कोई रहेगा जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैंस सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.org।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के जरूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा जरूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफर के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र मूवी, मेरे हम सफ़र किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, एल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जी दोस्तों, मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है। ब्याह सुर रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स, और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून है द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बाल माँ, मूवी कति पतंग तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: बालमा।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग। मेरी खातिर एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने अभी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले संस को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए, देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण मेरी खातिर आतन शस्त्र का है यार। और देखा जाए, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

0: बख्श दो।
1: जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन, लता मंगेशकर की आवाज। म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइरिक्स साहिर। मूवी दो कद दो कल्याण निखंतीन अख्तर सस्त का, जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों, अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। मूवी जिंदगी और तूफान निखंतीन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और लाइरिक्स राम अवतार। चलो हम मिलकर सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया, छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुनो कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते मूवी प्रोफेसर नहीं खनते ट्विंसेस्ट का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर, म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरिक से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर निकंदन ट्वेंसस्त का, चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज़ है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलकर सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

हुन हिस्सानी रे पर आप चुन है और यहां सारे में होता है क्या हो तेरे और अदर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रुकन हाथ सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसा रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक 3 5 2 2 फीड सीफ आपको तार करना है।

तारों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नत यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस्टिक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशिया से ओल्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना के ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीगर में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवतेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस्ली लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

हंटिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद आँख में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हम सफ़र। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

ਕਰੋ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों। फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारा फैफन शस्तक, सेशन शस्तक, सीफन शस्तक, आख्तन शस्तक, तो निगरी सीफन तक डबले रेस खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

जी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। अर्जुन कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसके गले में, उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज का और जिंदर कुमार का दिल के बाद अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बाद पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वीएनटी माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वीएनटी माला, उसके सामने राजेंद्र कुमार। राज कपूर जी क्या फरमाते हैं, मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शास्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुए उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

है दिल दीवाना बिन सजना के समझे ना, उसके बाद ये है ऐसे ना मुझे तुम देखो रेगिस्तान।

remake music आप सुने नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं, कहाँ पे लेकर चलते हैं जरा मिलकर सुनते हैं। सागर पनिया चटनी रिफल लक्ष्मीनगर म्यूजिक आपके लिए फाहन हिंदुस्तानी रेडियो।

सागर पनिया के गायले दोनों जने ना, आपसे बता दे मेरे प्यारे सुनने वालों कि बैठक का गाना स्टाइल, उनमें गला और कला जो है एकदम अलग स्टाइल का है। इसका बराबरी हमारे सुरिनाम के गायक के छोड़ के मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैठक गाना के गला जो है और स्टाइल जो है बिल्कुल अलहदा है। हमारा बॉलीवुड सांगर्स जो है, हाँ, इसे बहुत मेहनत करना करेंगे तो जाकर कहूँ से उतार पाएगा, मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो है अपना गला खराब कर देगा, पर ये स्टाइल बैठक गाना का स्टाइल के गला जो है लाजवाब है, लाजवाब है।

0: करटुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमन करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब फिर एक बार उपस्थित है स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज के कार्यक्रम में पनेल के पीछे बैठे हुए शांता खेमई जी और दूसरा ओर बैठे हुए बबली आसरा जी और तीसरा ओर बैठे हुए शीला जी, जो आज हम लोग के साथ पहला बार स्टूडियो में उपस्थित है। तो शीला जी, आपको बहुत बहुत से हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और अभी तो और बातचीत होएगा, पर शांता जी क्यों ना और एंट्री हो जाए तो हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ, जरूर से। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये जाने पहचाने शब्द है, तो जाने पहचाने भी यहाँ है। आपको हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और स्वीकार कीजिए यहाँ से प्यार भरी नमस्कार शांता जी का। शांता जी की
0: कुछ पुलिंग स्रीलिंग में तो हो ही जाता है ना,
1: अक्सर हो जाता है।

0: जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ ना था, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे सतगुरु तेरा हाथ था। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार हो आप सभी लोग के लिए, मेरा प्यार भरा नमस्कार हो आप सभी के लिए, छोटों को या बड़ों को सभी को मेरे नमस्कार हो, बड़ों को मेरे को पाई लगी, छोटों को मेरे राम राम हो।
0: नमस्ते। आने था माइक्रो

आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुँचे, बड़ों को सबको पाए लगी, छोटों को मेरा राम राम और हुई नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता? मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधिरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
0: इंद्र ने कहा,
1: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
0: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
1: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
0: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ्य दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
1: आप सभी तृप्त हो और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है, इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
0: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया और उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं।
2: हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
3: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते हैं। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर, और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाई के बोलक पर है ना, बुढ़ पुरनिया बोलिए पुराना भाषा में, तो अपना चली,
4: अपना चली।
3: हाँ, डांट दे शांता जी, पर हमारे जो औदर है ना,
4: औदर है,
3: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में, और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना आपके मुख से मैंने सुना है, पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तो क्या होगा। दिस इवेंट हेल बी सुंदर इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैट ऑन से औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं। कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग उनका जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य यह है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, दख फॉर लाइफ आदि। तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
4: वहाँ जो आते हैं ना, वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट्स खनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सेल्फ स्टैंडिंग रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाख उपफंग में दाह एक्टिविटी करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। उन लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना न पका

0: हम जब हमारा पेंशन हो गया है, हम बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी, पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दाख बस्तेडिंग हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया है। और ये दाख बस्तेडिंग जो है, देखो अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते, पर इवेंट इन फंड मऊत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हम लोग के लिए, और हेल भी सौंदर दूत। शांता जी, इस पे आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योगा तो कभी संगलेस इधर उधर और उधर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
1: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है, बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप, जब आप क्या, आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है, ऐसे हम देखें। तो उम्मीद जा हैगा जहाँ पे हमारा शिला जी, हमारे शिला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं, वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है।
2: सही बात।
1: हाँ, मोबाइल है, पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के
2: अकेलापन, अकेलापन जो है, अकेलापन बहुत अपने के महसूस करता है, इसलिए वहाँ आते हैं।
1: हाँ।
2: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइप के साथ जो खन होता है सबके साथ मिल के रहता है, तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में,
1: सब पुराना यादें जो
2: पुराना यादें सब आते हैं।
1: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के, तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना, तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ, और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में, तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी है, देखो ना, मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना, अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक।
2: सही नहीं जानते मैं लोग, हम लोगों कहाँ पहुँचो कोई ना।
1: हाँ, जैसे आप करते हैं वहाँ पे सेवा, और खदरा खुद दी औद्र या एक सी एक मैंने को पार्केर को एंड इकोले का सो एंड यूली दो एफ मैथ है
2: samen doen we met z'n allen. Ieder doet zijn eigen best, yeah. Hè, op een eigen manier. En doen we toch hebben we goed, deze karpaila seva is hebben we nodig. Deze was op keer. Doen ze roerie was op keer liever. Wanneer hebben we dit eigen.
1: Mijn gevoel is, Sila ji, aapke sanskaar bhi isne hai.
2: Ji, seva karne ke liye.
1: हाँ, घर से ऐसे सीख के आए, तब जो वही कहते भी ना, जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो संस्कार आप भी अपने घर से अपने आप, धन्य हो आपके माता पिता भी,
2: धन्यवाद है। अब वो ऊपर वाली भी देते ना, जो हम लोग के बुजुर्गो है वो की जो सेवा करिए, उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए और हिम्मत मिले है।
1: बात सही है,
2: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ। वो प्रेम के काम है ना, वो अपने दिल से चाहिए उनके करे के, अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
1: बात सही है एकदम से। बबली जी
0: भी कुछ कहने वाले थे। बबली जी, भारत में कैसे होता है, ऐसे ऐसा ऐसा इंस्टेंसेस है, ऐसा ऐसा दख फॉर लाइफ आदि होते हैं या नहीं होते?
3: आज से 30-40 साल पहले नहीं था, अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं,
1: वृद्धाश्रम
3: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब

0: वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था, सब एक मिलजुल के रहते थे। और उसी के कारण ज़बरदस्ती कई अपने माँ बाप को छोड़ा तो बेचारे रोते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कई तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। कई अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं। वो बेचारे रोते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल शर्मा कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
1: जी,
0: तो उसमें ऐसे ही जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना, वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम। तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है, कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप की कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है। भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है। तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे, वो बता रहे थे। तो करोड़पति खेलने आए ना, जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे। हाँ जी, हाँ। और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं, कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी,
2: तो कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
1: बिल्कुल ऐसा।
2: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से, जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए। और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शीला जी हम लोगों ने पितृपक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तक ख्याल है उसके उन बातों के। फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे हैं, आप संदेश को सुन रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ते गए। अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले, वो और गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं, और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत। क्योंकि लगभग 195 देशों है, और कहते हैं जहाँ हवा है और जहाँ पानी है वहाँ हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
1: हाँ, एकदम बहुत
2: तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वहाँ वहाँ हमारे और जो त्योहारे है त्योहारे भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और ख़ास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होलांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब जो यहाँ भारत में जो फेस्टिवल दोन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेक बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूँ कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से जो जा करके जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा माँ कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस उसमें पूंछ भी बना लिया पूंछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृपक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृपक्ष में बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृपक्ष में।
0: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी तो हमारे इतना काम नहीं करते थे, वो बेचारे उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग। हाँ तो अरे वो मंत्री जाते थे अपना जो कार्य करना है हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है ये, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़ी स्वास्थ्य से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं हैं तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है। तो पंडित को दान देना, गुरुद्वारे में दान देना, तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से ही अरे आ जाता है कि कैसा त्यौहार, और त्यौहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
1: पितरों का त्यौहार है।
0: हाँ जी, तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं।
1: दिन पर दिन ऊपर सब जोड़ देवे हैं और दिखावे हैं बतावे हैं कि कौन चीज है कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे के। हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान। हाँ जीते जी में जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे एक दूसरे के सेवा कर ले उसमें जितना सुकून मिले है। तो जो पितर के से पूजे से आज है इसे चले पितर पक तो इसमें जब भी पूजा करिए एक्स्ट्रा भी पूजा करिए तो दिल में इतना सुकून मिले है हम बताइए। और ये पितर के जीते जी जे अपन माता पिता के दुख देवे है और वो माता पिता जो गुजर जाए दिन लाइफ में ना रहे शरीर में ना रहे तो उस पीढ़ी में दुख आवे है बाधा आवे है। बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे रुकावट रहे ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे तो मैं ये कहूँ काम खोजे वो पे बाधा होवे और जब ये भी काम करे दिखे दुई तीन रोज में छूट गया आपके कॉलेज का नाम हो ये ऐसे कुछ ना कुछ बाधा हो रहे है। तो ओकर खातिर भी मौका मिले है जैसे आज साल में
3: लाने के लिए हाँ, काम करके सब।
1: जी जैसे ईसाइत पे है पितृपक्ष जो चल रहा है तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है और तो कि पितर लोग की खातिर पूजा कर दे पानी दे दे श्राद्ध कर दे उस सब के भी एगो तरीका हो। पंडित से जरूर से पूछो, पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो देख लो उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे
3: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना। हाँ। सत्संग में जाओ जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना और मंदिरों में तो सब कुछ भी उसे भी कर सके है।
1: जी शीला जी मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना
2: तिरंजलि अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं तिरंजलि दे सकते हैं और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे क्योंकि अच्छा। मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है।
1: हाँ।
2: तो अभी क्यों ना शांता जी
1: नहीं एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बाद में बता रही हूँ वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितृपक्ष तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे करो अंजलि में वो जल वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे, तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे ना, हाँ ऐसे, क्योंकि हाथ जो है ना चार का चार कोना है ना, मिडल फिंगर के है, दोई महिगा पिंक है एंड हैप्पी दी हाथ पालम सो, और चार कैती से चार देवता के वो समर्पण करल जा है, न दोई कैती से वो पितृ और यहाँ जो मिडल फिंगर है वो देवता और
2: अब ये तो शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को, पर ये भी और, इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता जी।
1: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सेल्फ, जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योर सेल्फ,
2: कहने के तात्पर्य ये शांता जी तीन ऋण हम लोग का होता है ना। वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण, जिनसे हम लोग सीख पाते हैं, ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है, और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए मंदिरों आदि में तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनेल के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदर जो हमारे पुराने गीतों हैं, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जोन हुए, गरीबताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा से सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना, तो हम लोगन पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोगन धरेला यार सस्तर साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर, कि उन लोगन अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोगन ऐसे करते थे, हम लोगन वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते है गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी
2: जी।
1: वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है उन लोगों के वो निकाल देते हैं अपने।
2: हाँ ऐसे होता ना विशिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग
1: बहुत गर्व
2: जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर, कि वो लोग आते हैं उन लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ हॉलैंड में ये सब
0: फैसिलिटी है
1: वो सब मोहलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियन के लिए बहुत अच्छा हैगा।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम लोग के जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि इंदलक वे चित आंदर्श फन आलसे का अस्पराक है दन मुतिक बिहार खान, और ऐसा बना लिया था। आप आजी लोगों के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट केंद्र में से हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता, पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खम रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तवन है
1: पहले के,
0: हाँ
1: खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को। अब देखिए टमाटर जैसे बनना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैनो बोन से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जाने तो दी कॉम्बिनेशन एंड एक फिन दैट एक आते दैट हम मिस अपने आजी के, तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है।
2: आज ये अकेले रहती थी,
0: आज ये अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते कब?
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राक होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकू दिन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना। मैंने कहना अच्छा।
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगों दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लेन केंद्रन केंद्रन
1: आशा लगाए के बैठे कि हमार लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए क्लेन केंद्र चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जा करके देख लो, चाहे रोज ना जाए पियो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा तो उन लोगन बांट करके जाओ, देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले, जैसे आप बताते हो।
0: हाँ, क्योंकि उन लोग के खरेखतल से,
1: हाँ उन लोग के जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से,
0: हाँ।
1: और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रही, मसाला जो पीस के बना देते ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है, सब है ये सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोग कुछ ले के चला चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन जाके सीख लो बैठो, जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते अब पछतावा है, बाद में पछतावा होता है।
1: वो सही बात देखो हम अपने की जब बोली ना, मेरे आजी जो थी तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठी थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास मेरी सबसे सनेसा पठाती थी, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, वो सनेसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे बैठ के अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बने लो,
2: हाँ।
1: तो जा आजी बतावे तो मोरी में धर ले, तो घर पर जब जाए तो हम भी वही तरीका से हम भी ट्राई करते, हम भी अपने बना देते,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने, हाँ। ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है, और जब पुरन के बैठी ला हम लोग, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक आतिफी तैयार रहे ना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत ये लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लोगो कुछ आजी आजा से, माए बाप से सीख लोगो, तो ओके अपने काम में लाओ, कर सकते हैं भी,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से, वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक न एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आंख से कम देखने लगेंगे, और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन घंटियां जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने ग्रोथ ऑर्डर्स कहते हैं ना, नई दवाओं में ग्रोथ ऑर्डर्स के लिए तो खूब मस्त, और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बना दुर्ग We hebben het druk, we hebben een drukke leven en we hebben een druk, druk, druk. De kinderen moeten naar de voetbal en de... Je kuch nahi jayenge, kyunki wo kindra na de football to baad mein jab musibat padte hai, bachcho ko pitr dosh lagte hai, aur pitr dosh aisa cheez hai jo kitna din chhodega nahi, kai peedhi tak jaye, kahin kahin par vivah nahi ho pa raha, to kahin kahin ghar mein beta beti aur ja kar ke dusra rasta pe chal jata hai, aur aisa aisa cheez jo peene lagte hai. ये सब पितर के और सेवा में कुछ न कुछ पितर ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है. तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क टाइट फॉर योर ऑर्डर्स. शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं हम, शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
1: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो वही वही सबके कमी है का उन लोग के बात सुनो क्या उन लोग मांगता है तनी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन लोग के भी तसल्ली हो जाते हैं. देखो हम लोग भी हम पुरानियन के साथ काम करती हूँ तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं. उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बांटो का भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो कैसे बांटो कैसे आप सो सुत लो बांटो उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है. जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उन लोग के घर में कुछ किन के ले जा करके दे दो उन लोग भोजन पकाते हैं क्या कमी है या तार कर लो ज्यादा. हाँ ईसाई तो कितना मोबाइल है जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना तो हम लोग सोचे इस सब तो यंगर से आगे निकल गए.
0: हाँ और ना ओइसन मोबाइल शीला जी स्मार्टफोन भी उनके बोले हैं. हाँ स्मार्टफोन फेसबुक है और
1: इंस्टाग्राम
0: है
1: सब कुछ है
0: और
1: हमें समय ना लगे है उतना सब ताकि उन लोग के जीवन के लिए अच्छा उन लोग के और ज्यादा समय है ना
0: बिल्कुल.
1: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जू बहस या उनमें जब देखी ला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते है ना कृष्ण के कुछ होते है सभी कुछ ताक ताक के सब अपन जू बहला लेता है.
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज. शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
2: जी.

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चून करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने देखा है शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन, कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ, वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ। हाँ। और वो खाना एक तरह से
1: प्रसाद
2: बन जाता है, और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
3: सही बात
1: भी। हाँ, कहते भी कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे, तो सोचो हाथ एक माँ खदान ना ऐसा तला
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम उधर तहस में जाओ तो बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता, पर एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे, पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था। शांता जी, लेडीज फर्स्ट, आप सुना दो।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है वो सब आगे देखे, पीछे ना मांगे देखे। हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे, और आगे देखते देखते और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाता है, जो उस जो हेल खुरपन जो है पीछे रह जाए, तो वो सब फर इंसान होए लगे। And it dank, this dank, yeah, that the read is that the bayard the house, order house for order zijn gemaakt. Dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wat zeg je bij John Wolle, Santa Didi? जोन देखो जब उन लोगन इसे जो बीमारी भी आई गई है, डेमेंसी बोलते हैं ना, कि इसलिए उन लोगन आते हैं या ऐसे घर में बुजुर्गों घर में रहने के लिए कि घर पर बच्चे लोग सेवा ना कर पाएगा ऐसे माँ बाप के, कि कर सके हैगा बाकी उन लोग की स्पेशल सेवा चाहिए, कोई की चाहेगा एक बार फिर घर में धरे के, और लड़कन ईसा एक लड़कन सब कोई काम करे हैगा, तो जब सब कोई काम करे हैगा ओके भी घर में छोड़ के जाइए, तो वो अकेले भी दिन भर अकेले रही, तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा करके सब भी उमन धर सकते, बाकी धर सकते हैं कहे खातिर ना, कोई बोले हमें तो शर्म लगे अपने माए बाप के ले जा करके वहाँ धरा, हम बोली नहीं, ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैगा जो दिमाग से जो तनी कम हो गया है ना, जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा, बाकी शर्म कब आएगा जब अपने माँ बाप के लिए जा करके वहाँ धर दियो इस घर में एक वृक्ष आश्रम में जो हम लोग के हैगा, जब ना जाइए उनके देखे तब वो शर्म के बात है, बाकी जो धरे हैगा वो शर्म ना है, वो लोग मजबूरी है।
1: जैसे
3: आपने बोला है कि अपने लिफ्ट खनौत से है अपने अपने जो उम्र के बराबर ही हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा, वो सही बात जो बोले है। वो ठीक हैगा, घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा, और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ, और बहुत ज्यादा घर पर रहोगे एक बार जो दो दफे तीन दफे हराल करे तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान, एक भाव बतिया बोले।
0: अरे शांता जी, हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
3: तो वैसे हैगा तो बोलते हैं कि वो उन लोग के कैनस नहीं हैगा,
1: कैनस ना रहता
3: कैसे उन ना पहले हम लोगन ना जानती दमयंती का है
0: yeah.
3: अब जब हम लोगन जान गए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे है कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे के क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैर हाल करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोगन दूसरा व्यवहार दूसरा का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त के लिए यहाँ से हम विज्ञापन लगा देते हैं विज्ञापन के बाद हम प्रोग्राम जारी करेंगे
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: सुनने वालों, कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन, जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम सेंडिंग में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बना कर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से और रहें और अच्छे बोलें एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पास जो जीवन में हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छी तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए, हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के तरीके से व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं, पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से हम बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज़ करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। पर देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम, एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है, बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। तो ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूँगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में, और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हों, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान, हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, और संजय जी आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
0: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है
2: जी।
0: हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

तो आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो हैं मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं, हाँ। पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, देखिए बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है जैसे हम मैंने कहा कि आप अकेले रह रहे हो, ऐसा होता है लोग अकेले रहते हैं घरों में अकेले रहते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि आप अकेले हैं। पर अकेला होना और अकेलापन ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है

0: हमारी जैसे कहते ना अनकही बातें, हमारा हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है। हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं। और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा वह महसूस करता है। जो जो इससे जूझ रहा होता है उसी को पता है कि वो उसको वो अकेलापन लग रहा है। तो ये एक बहुत जो कहते हैं ना, ये जो परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको यह लगता है कि भाई दुख के आप दुख आप कोई पीड़ा हो रखी, आपको दुख दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं, या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है। और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है। हम वहां हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख दुख महसूस करते हैं। और ये जो जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढें, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखिए, हम हर हर इंसान का जीवन अलग होता है, पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये अब बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में। संजय जी, एक गीत हो जाए अच्छा सा, जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए। चलिए आगे एक गीत हो जाए, फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, हम इंस्ट्रूमेंटल की ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं, क्योंकि

0: तो अभी हम सब सुने जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औदर के लिए काफ़ी चीज़ें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोज ही जा सकता कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे हॉलैंड में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना, कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्ग लोग पुरानियन जा करके अपना दिन बिता सकते हैं। जैसे कि या जैसे ब्यूर्थ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूर्थ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा, कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा उन लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके उन लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना सहारा हो गया टैक्सी के ना, कि अपना ले सकते हैं वो ला करके घर पर तो के है ले करके ले जाएगा, जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा, वहाँ से उतार करके लाकर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ, जाओ बाहर, बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ, अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा ना, वक्त हम लोग के जैसे पंडित जी बोलते हैं कि वक्त नहीं अगोरता है, वो सही हैगा कि हम लोग जा करके अपना टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ से जोड़ा रहेगा। और भी कि हम लोगन जब जितने बहिरे निकलियो उतना जो बहलीगा आप लोग के अकेलापन जो महसूस करता है घर पर। अब हम लोग के अनुराधा जी कितना बताया कितना अच्छी से, जो अकेलापन है ना, अकेलापन बहुत कठिन है, इसलिए कि दर दर पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया समय बिताने के लिए, कि अकेलापन तनी से दूर होवे, कि महसूस ना होवे कि आप अकेलो बाटो।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं, आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है, ये अकेलापन किसको है? देखिए जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, किसी के लिए माता पिता बनते हैं, किसी के लिए जीवन साथी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने, हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे, जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया, हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी, उनके सहारा जब, या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा। तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहां हम ने दूसरे को सहारा दिया, चाहे भले ही वो दोस्त है घर में किसी को भी, तो हमने हमेशा सहारा तो बने, पर कहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसे भी ऐसा भी होता है कि जब हम हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा, आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है, तो ऐसे में जब ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है, ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेला। अपन लग रहा है मेरे को एक सहारे की जरूरत है, तो

0: और ये बड़ा ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी ऐसी स्थिति आती है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी? नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है? समझा जाना, जहाँ लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती है ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा, आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी अपेक्षा हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता, उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता है, तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत खुश हैं। उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है, उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
1: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है, हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

पहले कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह न पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सके और उससे कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है वो सबसे बड़ी, वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन कहते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है। हर मुस्कराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को कभी ना कभी ये इस दुविधा से, इस परिस्थिति से के से गुजरना पड़ता है। तो चलें आगे और भी हम बात करेंगे, और आशा करते हैं कि देखिए अकेलापन है, पर इससे हम उभर कर क्या हम निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बस हम अकेले, अगर हमें ये महसूस होता अकेलापन है, क्या हम जीवन भर ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा? क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं?
चलिए पता लगाएंगे आगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

0: अकेलेपन के बारे में, तो देखिए हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और यह हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है, पर हम उसको इतना उसका महत्व नहीं समझते हैं। उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले, तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे एहसास की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छुपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात, हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। पर कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो देखिए वही बात दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो आप उसको भी समझने की कोशिश करें। और जहाँ आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा दुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं आपके, आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक माहौल बनाए, जिससे कि जहाँ पर आप हंस उनके साथ दो पल बिताएं, पर हंसता हुआ जीवन, जैसे कहते हैं ना, खुश मजाज रहकर जीवन बिताएं, तो काफ़ी हद तक आप जब अपने दिल की बात भी कोशिश करेंगे किसी को व्यक्त करने की, तो आपको आपका मन हल्का हो लगेगा, और काफ़ी हद तक आपको अकेलापन का की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ये हमें भगवान, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो हमें भगवान पूजा पाठ में सहारा लेना चाहिए, हैं आप ईश्वर को याद करें, अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंसान का जीवन को बदल सकती है। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिले जुले, अपने मन की बात अंदर दिल में ना दबाएं, अंदर ही अंदर उसको ना, जितना भी कठिन क्यों ना हो आप किसी से बात करें, कभी बहुत आपको किसी से नहीं कर सकते तो आप कोई डॉक्टर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पर बात जरूर करें, अपने दिल की बात दूसरे को जरूर बताएं, इससे आपका आधा जो अंदर दिल की बात है किसी को व्यक्त करने से आपका दिल हल्का होएगा, और ये एक जो अकेलापन का जो जो होता है, आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, जो आपको पसंद है, आपको क्या शौक है, बाहर खाएं पिए, घूमें फिरें, जो आपके शौक हैं उनको आप पूरा करिए, जो उसमें किसी को संगीत का, किसी को नृत्य का, डांस का, पेंटिंग का, बाजा बजाने का, गाना गाने का, जो आपके शौक हैं, किसी को लिखने का शौक है, और किसी को पिक्चर देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जो शौक है आप पूरा करिए, और जब जो शौक पूरा करेंगे तो उसमें आपको एक खुशी का एहसास होगा। तो ये अकेलापन की जो आपको जो आपका जो विचार है, इसमें ये बहुत सहायता करेगा कि आप आपकी सोच बदलने में आपको सहारा देगा, और आपकी सकारात्मक सोच जहाँ होने लगेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, और खुश मिजाज आप रहने लगेंगे, आपको एक खुशी महसूस होगी। तो ये ये जो एक तरीका है, इससे इंसान अपने अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर सकता है, और ये कोशिश में रह सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे हमें गुजरना ना पड़े। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी स्थिति, अकेलेपन से हमें स्थिति से गुजरना पड़े ना पड़े, तो यह मुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन से अपनी नकारात्मक सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं, और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना अपने जीवन में लाएं, तो हर चीज़ आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हर खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। और मैं चाहूँगी आप सब ये कोशिश जरूर करें, खुश रहें और सबको आसपास भी सबको खुश रखें, यही मेरी कामना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं ये आज का ये अंत करना चाहूँगी विषय। और संजय जी चलिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर से एक और गीत हो जाए।
1: अनुराधा जी बड़ा सुंदर संदेश आपने रखा।

0: सुनने वालों, आज के विषय जो रखा गया और पितृपक्ष अंतर्गत जो संदेश को रखा गया, जिसमें काफी संदेश जो अनुराधा जी ने रखे ना शीला जी
1: जी,
0: तो इस संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें हम लोग पुरखों और अपने औदर को अंतर्गत में बातचीत किया, और यही आशा लेकर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसे लेकर के और अपने अवधरों के साथ कुछ सुनाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ इसका
1: हाँ, वो जीवन में उतारना है उनको, है तनी से अपने अवधर की खातिर कुछ ये दिन बिताना है भी, ले जाओ उनको बाहर और देखना कि अगर आसपास में कहीं नगिश में भी कुछ हो कि जहाँ अपन दिन बिता सकते हैं, इतना हम लोग के दाह एक्टिविटी तो बा खुल गया है, चारों बगल खुलल है गा है, जहाँ जहाँ उनके अच्छा लगे वहाँ ले जा करके ज़रूर उनके एक दिन बिता करके वो चला आवे अपना।
0: दोस्तों, तो समय पे हमें ध्यान देते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो गीत का बोल जो लागी छूटे ना है, तो लागी छूटे ना के ओर हम बढ़ने से पहले ये क्या कहते हैं,

जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह आपकी मेहरबानी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

अच्छा, यहाँ से भी यहीं तक मेरे प्रोग्राम भी था सबके साथ। धन्यवाद हो संजय, पंडित संजय जी, शांता दीदी, बबली दीदी, भाभी भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। यही मैं कहूँगा आपके, आप लोग से कि शुभ रात्रि होवे, मेरा प्यार भरा नमस्कार होवे आप लोग के, और फिर जरूर अगले बार मिलेगा।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए शांता खेमाई जी और श्रीमती शीला जी, बबली आसरा जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय, और भारत से अनुराधा चंद्र जी जो अपना संदेश को रखे, यही आशा लेकर के कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

और मैं कहना चाहूंगी, जीवन एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

हाँ तो अच्छा, मेरे सुनने वालों, यही ये था एक बहुत सा अच्छा गीत आप लोग के लिए, मेरे को ख्याल में आप लोग के पसंद आया हुआ। अब दूसरा

हाँ तुम जो यूँ भुला ना पाओगे, ये तो भी एक बहुत अच्छी गाना थी ना। अच्छा हम लोग चलते हैं दूसरे गाने के ओर, आप लोग उनसे मजा लेना।

दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए। अच्छा, वो हम लोग फिर एक दूसरा गाना तैयार करके धरा है, ये है मदर इंडिया के, दुनिया में आए है तो जीना ही पड़ेगा, और वो गाया है लता मंगेशकर। अच्छा चलो हम धरते हैं, आप लोग अच्छे से सुनना।

चलो ये कुछ तनी से कुछ गड़बड़ी हो गया है, हम लोग धरेगा ये गाना फिर आप लोग अच्छी से सुनना। खोजने में तो तनी से देर हो गया ना। चलो कुछ अच्छा हम लोग एक दूसरा गाना चुन किया है, तभी हम लोग फिर खोज करके वो गाना फिर चलेगा।

अच्छा चलो हम लोगन गाना खोज करके हम लोगन धर लिया है, तो हम लोगन फिर चलेगा दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा ना। और ये गाना मदर इंडिया के है।

ये था दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हम लोगन अब अगली गाना धरेगा। ये सुहानी रात जो है ना, अच्छे रात है, इसलिए आप सभी लोग के लिए एक अच्छा सा गाना धरा है। चलो

0: अच्छा चलो, एक गाना वो हो गया ना, तो उनके भी एक दूसरा गाना धरेंगे हम लोग आपके लिए, अच्छी से सुनना ये वाली भी, उनसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा चलो, वाह वाह।
1: No, no, y el video que compró.

गाना आपने सुन लिया रेडियो फाहुन से। अब ये अगले गाना धरेगा आ अब लौट चले, ये लता मंगेशकर के मुकेश राज कपूर। ये फिल्म का नाम है ये देश में गंगा बहती है। अच्छा चलो ये भी सुन लो आप। अच्छा

अच्छा आ अब लौट चले, ये बहुत अच्छा गाना था। पुराने गाने इनमें बहुत है, इनमें और रस भरे है ना, कि जो नया गाने इस वक्त इस जमाने में है। आप लोग के लिए एक दूसरा गाना धरेगा, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासे है जिंदगी। अब ये गाना है माला सिन्हा के, इनमें फिल्म में खेला है, आप अच्छी से सुनना।

0: अच्छा चलो यहीं तक हम लोग के गाना आज थी ना, अब न्यूज़ के बारी आ गया है तो आप लोगन फिर न्यूज़ के बाद ये गाना फिर चलेगा, आप लोगन अब न्यूज़ के ओर ध्यान धरियो।
1: You got one?

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए है तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में अब बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ीर बे हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज़ करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जाह्नवी कपूर के

सुन, कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

के प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया है।

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड दो रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राशमी खान ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए है। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए है, और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

फनहुन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न, यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान प्रश्नेटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

आलू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग, रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग, किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग दुर्भाग्य है, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं के से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के प्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाप कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्याओं को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया। हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज

फनफन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ ना था, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे सतगुरु तेरा हाथ था। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Oh, namaste.
1: Pomche.
0: आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुँचे, बड़ों को सबको पाई लगी, छोटों को मेरा राम राम और खुये नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता? मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधीरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
0: इंद्र ने कहा,
1: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
0: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
1: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
0: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ्य दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
1: आप सभी तृप्त हो और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है, इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
0: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया और उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
2: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते हैं। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर, और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाई के बोलक पर है ना, बूढ़ पुरनिया बोलिए पुराना भाषा में, तो अपना चली,
3: अपना चली।
2: हाँ, डांट दे शांता जी,
3: क्या सीखे क्या है?
2: पर हमारे जो औदर है ना,
3: औदर है,
2: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में, और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना आपके मुख से मैंने सुना है, पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तब क्या होगा? दूसरे इवेंट हेल भी सुंदर, इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैट ऑन औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ न कुछ करते हैं। कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग उनका जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य यह है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, दख फॉर लाइफ आदि। तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
3: वहाँ जो आते हैं ना, वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट्स खनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सलस्तांदख रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाख उफ़ांग में दाह एक्टिविटीज करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। उन लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना ना पका सकते हैं, वहाँ सब घर पर अकेला भी ना रह सकते हैं दिन भर, इसलिए वहाँ पर आते हैं सभी लोग कि आ करके अपना जितना हम लोग के वहाँ एक्टिविटीज बा हम लोगन एक्टिविटीज करेला सबके साथ हो करके वहाँ, तब सब कोई शाम को घर पर चला जाता है। वहाँ उन लोग के दिन ऐसे बहल यात्रा है।
2: कहने के तात्पर्य यह है कि हम जब हमारा पेंशन हो गया, हमें बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी, पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दाख बस्तेईदिंग हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया है। और ये दाख बस्तेईदिंग जो है, देखो अनेकों अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते, पर इवेंट इन फंड मौत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग के, हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हैं हम लोग के लिए, और हेल भी सुंदर दातुदा दूत। शांता जी, इस पर आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योगा तो कभी संगलेस इधर उधर और उधर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
4: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है, बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप, जब आप क्या, आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को हो, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है, ऐसे हम देखें। तो उम्र जा हैगा, जहाँ पे हमारा शिला जी, हमारे शिला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं, वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है।
3: सही बात,
4: हाँ मोबाइल है, पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के कारण,
3: हाँ, अकेलापन जो है, अकेलापन बहुत अपने के महसूस करता है, इसलिए वहाँ आते हैं।
4: हाँ।
3: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइम के साथ जो खनोते हैं सबके साथ मिल के रहता है, तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में,
4: सब पुराना यादें जो
3: पुराना यादें सब आते हैं।
4: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के, तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना, तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ, और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में, तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी है, देखो ना, मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना, अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक। जैसे आप करते हैं वहाँ पे सेवा, और खदरा खो दी और पार्केर
3: samen doen we met z'n allen. Iedereen doet zijn eigen best, yeah. Hè, op een eigen manier. En doen we toch hebben we goed, deze karpaila seva is een nodig, deze basabke, John Zaruri basabke liye, wanneer we een dit hebben.
4: Amerika, ja, ze zei dat je aapke sanskar die is niet hè.
3: Jee, ze waken niet hier.
4: हाँ, घर से ऐसे सीख के आए, तब जो वही कहते भी ना, जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो संस्कार आप भी अपने घर से, आप धन्य हो आपके माता पिता भी,
3: धन्यवाद है। अब वो ऊपर वाली भी देते हैं ना, जो हम लोग के बुजुर्गों है वो की जो सेवा करिए, उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए, और हिम्मत मिले है।
4: बात सही है,
3: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ। वो प्रेम के काम है ना, वो अपने दिल से चाहे उनके करे के अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
4: बात सही है एकदम से। बबली जी,
2: बबली जी भी कुछ कहने वाले
4: थे।
2: बबली जी, भारत में कैसे होता है ऐसे ऐसा ऐसा इंस्टांसिस है, ऐसा ऐसा डक फॉर लाइफ आदि होते हैं या नहीं होते?
5: आज से 30-40 साल पहले नहीं था, अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं,
4: वृद्धाश्रम
5: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था, सब एक मिलजुल के रहते थे और उसी के कारण ज़बरदस्ती कोई अपने माँ बाप को छोड़ा तो बेचारे रोते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कई तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कई अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं। वो बेचारे रोते हैं सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल शर्मा कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
4: जी,
5: तो उसमें ऐसे जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना, वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम। तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है, कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप की कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है, भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है। तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे वो बता रहे थे, तो करोड़पति खेलने आए ना, जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे। हाँ जी हाँ। और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं, कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी।
2: तो कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने माता पिता अपने दादा दादी नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
4: बिल्कुल ऐसा।
2: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए, और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शिला जी हम लोगों ने पितृ पक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तलक ख्याल है उसके उन बातों के। फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे आप संदेश को सुन रहे हैं उसमें और आगे बढ़ते गए, अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले वो गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं, और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि लगभग 195 देशों है और कहते हैं जहाँ हवा है और जहाँ पानी है वहाँ हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
4: हाँ एकदम, बहुत
2: तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वहाँ वहाँ हमारे और जो त्योहारे है त्योहारे भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और खास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होलांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब जो यहाँ भारत में जो फेस्टिवल दोन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेख बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से, जो जा करके जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा माँ कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस, उसमें पूछ भी बना लिया पूछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृपक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृपक्ष में, बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृपक्ष में।
5: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी, तो हमारे इतना काम नहीं करते थे वो बेचारे, उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग हाँ। तो अरे वो मंदिर जाते थे अपना जो कार्य करना है हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़े स्वाद से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं है तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है, तो पंडित को दान देना गुरुद्वारे में दान देना। तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से अरे आ जाता है कि कैसा त्योहार, और त्योहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
4: पितरों का त्यौहार
5: हाँ जी। तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे करते हैं।
4: दिन पर दिन ऊपर ऊपर सब जोड़ देवे है और दिखावे है बतावे है कि कौन ची है कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे के। हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान, हाँ जीते जी में जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे।

0: आवे हैं, बाधा आवे हैं। बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे, रुकावट रहे, ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे, तो मंगे कहूँ काम खोजे वो पे बाधा होवे, और जो ये भी काम करे दिखे दो तीन रोज में छूट गया, आपके कॉलेज का नाम हो, ये ऐसे कुछ ना कुछ बाधा रहे है। तो ओकर खातिर भी मौका मिले है, जैसे आज
1: साल में आने के लिए काम करके सर
0: जी, जैसे ईसाई पे है पितृपक्ष जो चल रहा है, तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है, और तो कि पितर लोग के खातिर पूजा कर दे, पानी दे दे, श्राद्ध कर दे, उस सब के भी एगो तरीका हो, पंडित से जरूर से पूछो, पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो, देख लो उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे,
1: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना। हाँ। सत्संग में जाओ, जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना, और मंदिरों में तो सब कुछ उसे भी कर सकेगा
0: जो अच्छा। जी शीला जी, मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना,
2: तिरांजलि, अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं, तिरांजलि दे सकते हैं, और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे। अच्छा। क्योंकि मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है। हाँ। तो अभी क्यों ना शांता जी
0: ने एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बाद में बात बता रही हूँ, वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितृपक, तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे, जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे करो, अंजलि में वो जल ले वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे, तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे ना। हाँ ऐसे, क्योंकि हाथ जो है ना चार कोना है ना, मेरा फिंगर के है दोयम है का पिंकर एंड हैप्पी दी हम पालम सो, और चार कैची से चार देवता के समर्पण करल जा है, दोयम कैची से वो पितर, और यहाँ जो मेरा फिंगर है वो देवता, और
2: अब ये तो शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को, पर ये भी है, इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता जी।
0: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सेल्फ, जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योर सेल्फ,
2: कहने के तात्पर्य है शांता जी, तीन ऋण हम लोग का होता है ना। वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है, और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण, जिनसे हम लोग सीख पाते हैं, ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण, और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है, और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए मंदिरों आदि में तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनील के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदर जो हमारे पुराने गीतों हैं, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जौन हुए, गरीबताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा से सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना तो हम लोग पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोग धरेला यार सस्तर साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर कि उन लोग अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते है गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है वो लोगन के वो निकाल देते हैं अपना।
2: हाँ, ऐसे होता ना विशिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर, कि वो लोग आते हैं वो लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ हॉलैंड में ये सब
0: फैसिलिटी है
1: वो सब मोखलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियों के लिए बहुत अच्छा हैगा।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम के जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि इतलक वे चित आंदर्श फन आसे का आसपरा खैर दन मुतिक बिहार खान, और ऐसा बना लिया था आप आजी लोगन के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट केंद्र मसे हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खान रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तों है
1: पहले के, हाँ, खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को, अब देखिए टमाटर जैसे बनना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैंडो बोने से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जाने तो दी कॉम्बिनेशंस एंड एक फिन दैट एक कैप आल्टे दैट हम मिस अपने आजी के, तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है।
2: आज ये अकेले रहती थी,
0: आज ये अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राक होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकुदीन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना। मैंने कहना अच्छा।
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगों दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लाइन केंद्रन केंद्रन
1: आशा लगाए के बैठे कि हमार लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए क्लाइन केंद्र चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जा करके देख लो, चाहे रोज ना जाए पियो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा, तो उन लोगन बांट लेवो,
0: बांट लेवो,
1: बांट करके जाओ, देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले, जैसे आप बताते हो,
0: क्योंकि उन लोग के खरेखतल से,
1: हाँ, उन लोग के जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से,
0: हाँ।
1: और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रहे, मसाला जो पीस के बनाते थे ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है, सब सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोग कुछ ले के चला चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन जाए के सीख लो बैठो, जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते हैं, पछतावा है, बाद में पछतावा होता है।
1: वो सही बात, वो सही बात। देखो हम अपने की जो बोली ना, मेरे आजी जो थी तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठी थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास तो मेरी सबसे सनेसा पठाती थी, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, बस सनेसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बने लो,
2: हाँ।
1: तो जा आजी बतावे तो मोरी में धर ले, तो घर पर जब जाए तो हम भी उही तरीका से हम भी ट्राई करते, हम भी अपने बना देते,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने,
2: हाँ।
1: ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है, और जब पुरन के बैठी ला हम लोग, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक एक्टिविटी है ना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत ये लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लोगो कुछ आजी आजा से माए बाप से सीख लोगो, तो ओके अपने काम में लाओ, कर सकते हैं,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक ना एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आंख से कम देखने लगेगे और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन बार तीन घंटियां जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने ग्रोथ ऑर्डर्स कहते हैं ना, नई दलांस में ग्रोथ ऑर्डर्स ऑर्डर्स के लिए तो खूब मस्त। और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बन दृक लीफ एंड वह बन दृक द केंद्र मुतना द फुटबॉल एंड द ये कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो किंद्र ना द फुटबॉल तो बाद में जब मुसीबत पड़ते हैं बच्चों को पितृ दोष लगते हैं, और पितृ दोष ऐसा चीज है जो कितना दिन छोड़ेगा नहीं,
2: कई पीढ़ी तक जाए।
0: कहीं कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं कहीं घर में बेटा बेटी और जाकर के दूसरा रास्ता पे चल जाता है, और ऐसा ऐसा चीज पीने लगते हैं। ये सब पितर के और सेवा में कुछ न कुछ पितर ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है। तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क दैट फॉर योर ऑर्डर्स। शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं, हम शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
1: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो वही वही सबके कमी है का उन लोग के बात सुनो क्या उन लोग मानता है तनी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन लोग के भी तसल्ली हो जाते हैं। देखो हम लोग भी हम पुरनियन के साथ काम करती हूँ तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं। उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बांटो का भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो कैसे बांटो कैसे आप सो सुतलो बांटो उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है। जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उनके घर में कुछ किन के ले जा करके दे दो उन लोग भोजन पकाते हैं क्या कमी है या तार कर लो ज्यादा हाँ ईसाई तो कितना मोबाइल है जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना तो हम लोग सोचे इस सब तो यौगर से आगे निकल गए ले
0: हाँ और ना ओइसन मोबाइल शीला जी स्मार्टफोन भी उनके पास है स्मार्टफोन फेसबुक है और
1: इंस्टाग्राम
0: है
1: सब कुछ है
0: और
1: हमें समय ना लगे है उतना सब ताकि उन लोग के जीवन के लिए अच्छा उन लोग के और ज्यादा समय है ना
0: बिल्कुल
1: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जू बहल जा उनमें जब देखी ला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते हैं ना कृष्णा के कुछ होते हैं सभी कुछ ताक के सब अपन जो बहला लेता है।
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज। शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
2: जी

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चून करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने देखा है शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन, कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ, वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ। हाँ। और वो खाना एक तरह से प्रसाद बन जाता है, और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
1: सही बात भी। हाँ, भी कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे, तो सोचो हाथ एकत माँ खदान ना। हाँ, ऐसा तरह
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम औद्र तहस में जाओ तो बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, इस बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता, पर एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे, पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था। शांता जी, लेडीज फर्स्ट, आप सुना दो।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है वो सब आगे देखे, पीछे ना मांगे देखे। हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे, और आगे देखते देखते और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाता है, जो उस जो हेल खुरपन जो है पीछे रह जाए, तो उस सब फर इंसान होए लगे धैब सखेन अर्थ वे नेक्स्ट जवेत से ओगने वात से मुतदूर एन एक डेंक दे डेंक एक या दा दा दा द रीड इज दैट देयर न वयार द हाउस ऑर्डर न हाउस फॉर ऑर्डर से खमा dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wo sehi ba jon bole hai Santa Dide ji, jon dekho jab un logan isai jon bimari bhi aayi gayi hai, demensi bolte hai na, कि इसलिए उन लोगन आते हैं ऐसे घर में, बुजुर्ग घर में रहने के लिए, कि घर पर बच्चे लोग सेवा ना कर पाएगा ऐसे माँ बाप के, कि कर सके हैगा बाकी उनके स्पेशल सेवा चाहिए, कोई के चाहेगा ये मार फिर घर में धरे के, और लड़कन ईसाई लड़कन सब कोई काम करे हैगा, तो जब सब कोई काम करे हैगा ओके भी घर में छोड़ के जाइए तो अकेले भी दिन भर अकेले रहे, तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा करके सब भी उमन धर सकते, बाकी धर सकते हैं कहे खाते ना, कोई बोले हमें तो शर्म लगे अपने माए बाप के ले जा करके माँ धरा, हम बोली नहीं ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनके सेवा नहीं कर पाते हैगा, जो दिमाग
0: जो चाहिए
3: से, दिमाग से जो तनी कम हो गया है ना, जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा, बाकी शर्म कब आएगा जब अपने माँ बाप के लिए जा करके वहाँ धर दियो इसन घर में, एक वृक्ष आश्रम में जो हम लोग के हैगा, जब ना जाइयो उनके देखे तब तो वो शर्म के बात है, बाकी जो धरे हैगा वो शर्म ना है, उन लोगों का मजबूरी है।
1: मैं से दीदार वैर कर
3: जैसे आपने बोला।
1: हाँ,
3: जैसे आपने बोला है कि अपने लिफ्टेक खनोत से है, अपने अपने जो उम्र के बराबर ही हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा, वो सही बाजोन बोले है।
1: हाँ,
3: और वो ठीक हैगा, घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा, और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ। और बहुत ज्यादा घर पे रहोगे एक बार जो दुई दफे तीन दफे हराल करे तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान, एक भाव बतिया बोले
0: अरे शांता जी हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
3: हां, तो वैसे रहेगा तो बोलते कि वो उन लोग के कैनस नहीं रहेगा,
1: कैनस ना रहता
3: कैसे उन ना पहले हम लोगन ना जाने थी दमयंती का है
0: yeah.
3: अब जब हम लोगन जान के लिए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे है कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे कि क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैर हाल करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोगन दूसरा व्यवहार दूसरे का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त के लिए

0: कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन, जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम सेंडिंग में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बनाकर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से रहें और अच्छे बोलें एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छी तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए, हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के हम तरीके से व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं, पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से हम बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम, एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है। बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूँगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में, और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हों, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, और संजय जी आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
0: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है
2: जी।
0: हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

0: तो आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो हैं मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं, हाँ। पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मैं मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, देखिए बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है जैसे अब मैंने कहा कि आप अकेले रह रहे हों, ऐसा होता है लोग अकेले रहते हैं घरों में, अकेले रहते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि आप अकेले हैं। पर अकेला होना और अकेलापन, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन पर संदेश भी आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपसे संपर्क नहीं करते, लोग आपको आपसे बातें भी करते हैं, फोन मिलाते हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग आपके हालचाल भी पूछते रहते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक खाली जगह बनी रहती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी जैसे कहते हैं ना अनकही बातें, हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है, हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा वह महसूस करता है, जो इससे जूझ रहा होता है उसी को पता है कि उसको वो अकेलापन लग रहा है। तो ये एक बहुत जो कहते हैं ना, ये जो परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको यह लगता है कि भाई दुख आप कोई पीड़ा हो रखी, आपको दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है, और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, पर ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है। हम वहां हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख महसूस करते हैं। और ये जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखिए, हम हर इंसान का जीवन अलग होता है, पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में। संजय जी, एक गीत हो जाए अच्छा सा, जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए। चलिए आगे एक गीत हो जाए, फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों, सुनने वालों, हम इंस्ट्रूमेंटल की ओर बढ़ रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं, क्योंकि

0: तो अभी हम सब सुने जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औदर के लिए काफ़ी चीज़ें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोजी जा सकता है कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे हॉलैंड में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना, कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्गों लोग पुरानिये जा करके अपना दिन बिता सकते हैं। जैसे कि या जैसे ब्यूथ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूथ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा, कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा उन लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके उन लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना सहारा हो गया टैक्सी के ना, कि अपना ले सकते हैं वो ला करके घर पर तो के है ले करके ले जाएगा, जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा, वहाँ से उतार करके लाकर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ, जाओ बाहर, बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ, अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा ना, वक्त हम लोग के जैसे पंडित जी बोलते हैं कि वक्त नहीं अगोरता है, वो सही हैगा कि हम लोग जा करके अपना टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ से जोड़ा रहेगा। और भी कि हम लोगन जब जितने बहिरे निकलियो उतना जो बहलीगा आप लोग के अकेलापन जो महसूस करता है घर पर। अब हम लोग के अनुराधा जी कितना बताया कितना अच्छी से, जो अकेलापन है ना, अकेलापन बहुत कठिन है, इसलिए कि दर दर पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया समय बिताने के लिए, कि अकेलापन तनी से दूर होवे, कि महसूस ना हो कि आप अकेलो बाटो।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं, आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है, ये अकेलापन किसको है? देखिए जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, किसी के लिए माता पिता बनते हैं, किसी के लिए जीवन साथी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने, हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे, जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया, हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी, उनके सहारा जब या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा। तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहाँ हम ने दूसरे को सहारा दिया, चाहे भले ही वो दोस्त है घर में, किसी को भी, तो हमने हमेशा सहारा तो बने, पर कहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसे भी ऐसा भी होता है कि जब हम हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा, आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है, तो ऐसे में जब ऐसा ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है, ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेलापन लग रहा है, मेरे को एक सहारे की जरूरत है। और ये बड़ा ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी स्थिति आती है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी? नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है? समझा जाना, जहाँ लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती है ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता, उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता है, तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई जरूरी नहीं आप बहुत खुश हैं। उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है, उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
0: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

ने कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह ना पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सके और उसे कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है वो सबसे बड़ी, वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन कहते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को

क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं? चलिए पता लगाएंगे आगे। उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

अकेलेपन के बारे में, तो देखिए हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और ये हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है पर हम उसको इतना उसका हम उसका महत्व नहीं समझते हैं उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे एहसास की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छुपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात, हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है।

0: कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो, देखिए वही बात, दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो, आप उसको भी समझने की कोशिश करें, और जहां आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में, तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा कोई हमारा दुख रुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी, देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें, आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं, हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं आपके, आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, और जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक माहौल बनाए, जिससे कि जहाँ पर आप हंस उनके साथ दो पल बिताएं, पर हंसता हुआ जीवन, जैसे कहते ना, खुश मिजाज रहकर जीवन बिताएं, तो काफी हद तक आप जब अपने दिल की बात भी कोशिश करेंगे किसी को व्यक्त करने की, तो आपको आपका मन हल्का हो लगेगा, और काफी हद तक आपको अकेलापन का की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ये हमें भगवान, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो हमें भगवान पूजा पाठ में सहारा लेना चाहिए है, आप ईश्वर को याद करें, अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंसान का जीवन को बदल सकती है। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिले जुले, अपने मन की बात अंदर दिल में ना दबाएं, अंदर ही अंदर उसको ना, जितना भी कठिन क्यों ना हो आप किसी से बात करें, कभी बहुत आपको किसी से नहीं कर सकते तो आप कोई डॉक्टर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पर बात जरूर करें, अपने दिल की बात दूसरे को जरूर बताएं, इससे आपका आधा जो अंदर दिल की बात है किसी को व्यक्त करने से आपका दिल हल्का होएगा। और ये एक जो अकेलापन का जो होता है, आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, जो आपको पसंद है, आपको क्या शौक है, बाहर खाएं पिएं, घूमें फिरें, जो आपके शौक हैं उनको आप पूरा करिए, जो उसमें किसी को संगीत का, किसी को नृत्य का, डांस का, पेंटिंग का, बाजा बजाने का, गाना गाने का, जो आपके शौक हैं, किसी को लिखने का शौक है और किसी को पिक्चर देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जो शौक है आप पूरा करिए। और जब जो शौक पूरा करेंगे तो उसमें आपको एक खुशी का एहसास होगा। तो ये अकेलापन की जो आपको जो आपका जो विचार है इसमें ये बहुत सहायता करेगा कि आप आपकी सोच बदलने में आपको सहारा देगा और आपकी सकारात्मक सोच जहाँ होने लगेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी और खुश मिजाज आप रहने लगेंगे, आपको एक खुशी महसूस होगी। तो ये ये जो एक तरीका है इससे इंसान अपने अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर सकता है और ये कोशिश में रह सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे हमें गुजरना ना पड़े। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी स्थिति अकेलेपन से हमें स्थिति से गुजरना पड़े ना पड़े, तो यह मुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन से अपनी नकारात्मक सोच को नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना अपने जीवन में लाएं, तो हर चीज़ आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हर खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। और मैं चाहूँगी आप सब ये कोशिश जरूर करें, खुश रहें और सबको आसपास भी सबको खुश रखें, यही मेरी कामना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं ये आज का ये अंत करना चाहूँगी विषय। और संजय जी चलिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर से एक और गीत हो जाए।
1: अनुराधा जी बड़ा सुंदर संदेश आप

0: सुनने वालों, आज के विषय जो रखा गया और पितृपक्ष अंतर्गत जो संदेश को रखा गया, जिसमें काफी संदेश जो अनुराधा जी ने रखे ना शीला जी,
1: जी
0: तो इस संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें हम लोग पुरखों और अपने औदर को अंतर्गत में बातचीत किया, और यही आशा लेकर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसे लेकर के और अपने औदरों के साथ कुछ सुनाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ इस
1: हाँ, वो जीवन में उतारना है उनको है तनी से अपने औदर की खातिर कुछ ये दिन बिताना है भी, ले जाओ उनको बाहर और देखना कि अगर आसपास में कहीं नगिश में भी कुछ हो कि जो अपन दिन बिता सकते हैं, इतना हम लोग के दाह एक्टिविटीज बा खुल गया है, चारों बगल खुलल है गा है, जहाँ जहाँ उनके अच्छा लगे वहाँ ले जा करके जरूर उनके एक दिन बिता करके वो चला आवे अपना।
0: दोस्तों तो समय पे हमें ध्यान देते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो गीत का बोल जो लागी छूटे ना है, तो लागी छूटे ना के ओर हम बढ़ने से पहले ये क्या कहते हैं,

जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वह आपकी मेहरबानी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Vertrouw op je weg. Vertrouw op je weg en blijf altijd vooruit gaan. Wat kijkt hij? Ki chalne ka naam zindagi hai bhaiya. Chalte raho, aage kadam badhate raho. Baithe raho te dimag dhaurate raho. Par aage kadam badhate raho. यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छा, यहाँ से भी यही तक मेरे प्रोग्राम भी था सबके साथ। धन्यवाद हो संजय, पंडित संजय जी, शांता दीदी, बबली दीदी, भाभी भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। यही मैं कहूँगा आपके, आप लोग से कि शुभ रात्रि होवे, मेरा प्यार भरा नमस्कार होवे आप लोग के, और फिर जरूर अगले बार मिलेगा।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए शांता खेमाई जी और श्रीमती शीला जी, बबली आसरा जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय, और भारत से अनुराधा चंद्र जी जो अपना संदेश को रखे, यही आशा लेकर के कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

जीवन एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।